करो विनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आ गए बसु सुहेला।

तुद पहवै अंधी परवान, नानक जाने जान सुजान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गावै को जपै जसै दूर गावै को विखै हादराह दूर कथना कथि ना आवै तोट काथ कथ कथि कोटि कोट कोट दिंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे उकमी हुकम चलाए राह नानक विगसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए भाखिया भाउ अपार आखै मंगहै देह देह दात करे दातार फिर के अगे रखिए जित दिसाए दरबार मुँह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यारे अमृत

नाश। मन्ने की गत कहीं ना जाए, देखो कहे पिछै पछताए। कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन हुए, देखो मन जाने मन कोए। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगण भवन की शुद्ध। मन्नै मुह चोटा ना खाए, मन्नै जम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पथ से प्रगट जाए। मन्नै मग्न चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै पावह मोख द्वार, मन्नै परवार साधार। मन्नै तरै तारे गुरसिख, मन्नै नानक भवै न भिखो। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान। पंचे सोह हिदर राजान, पंचां का गुरु एक ध्यान। जे को कह करै विचार, करते कह करणै नाहीं सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख था प्रख्या जिन सूत।

असंख जप असंख भव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दाता और असंख सूरमुख पक्षार असंख मुन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार।

नामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ति विपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राजराजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राजराजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणि नमो अस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भोक्ते नमो जोग जोगेश्वरं परम ज्योक्ते नमो नित्य नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सा साह नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो अस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चदानंद सद्भं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता दुर दर्दंग अगंग मोग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अशेदी अभेदी अनामंग अकामंग समस्त उपराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चाचरी छंद

अनुभूत अंग या भाव अपंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय काम मत उत्प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य

कृष्ण भगवती संतव प्रसाद कहते किया सिद्धि से क्या भिज पैसा क्या गंज कर में क्या पंच पर में क्या भिज लो कह क्या आदित सो कह के भूत भरने के विभूत करने के राजन प्रभा एक धर्म तो जाहे किया शोक भरने के सर्वाय भरने के जग पंकृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्म स्वरूप है कि अनपहुन उपे कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीने

है कि कर्मं करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है, कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दानी है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पहुन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है, कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हमता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है, के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंकली में के परमंख ही में के आकल अलाम के साहिब कलाम है, के हुस्नुल वजू है तमामुल रुजू है हमेशा सलाम में सली खत्म दाम में गनीम उल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंद उल मकान है जमीन उल जमान है तमीन उल तमाम में रजूल ने दान है हरीफ उल अजीम मेरे जायक यकीन है, अनेक कुल तरंग है अभेद है अभंग है आजी जुल निवास है गनी मुल खिराज निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजोक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है,

अगाध स्वरूप निर्बाध में पूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते नृ साकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रवाह है आ जाए है आ जाहे भगवती शंतु प्रसाद कि जा हरजूर है कि हाजर हजूर है हमें सलो सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसन अल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी देहंद है कि राज करहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसन उल जमाल है कि गनीमुल खिराज है गरीबुल निवास है हरीफुल शिकन है हरासुल फिकन है कलंकंक प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है कि सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है

नमो नमो इंद्र इंद्रय नादम विपुते। कलंकार रूपे अलंकर अलंके नमो आश्वासे नमो बांक बंके। अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे। एक अक्षरी शांत

कृपा दृष्टन जाहि ने हरि होता किता पन कमय हरि हो रित सिद्ध कर्मो सब होई दुष्याश्व सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम ते हारू कहा दारिद दुष्ट दोखते रहा।

माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मन हो विसारिये, मन हो क्यों विसारिये विड़दाता, जे अग्न में आहार पहुंचावे। ओसनु के हो पोहे ना सकी,

कि कर्म कमाया तुद शरीरा जातु जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया।

दिव्य दृष्ट होई। ये श्रवण हो मेरे हो साचे सुनने नू पठाए, साचे सुनने नू पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस सम

धाणिया त्यों मथे त्रम राय नाम ते अहिंसा जना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवा।

रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठौ नंदन प्रथम राग भैरो वै कर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गाव है बंगली पुन वसलेख ही की पही बारी भैरव की पांचौ नारी पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगाल मद माधव गाव है ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी पहांत अष्ट पुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पांचौथा पह गौण करी अरदेव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी तनाशरी पांचौ गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उबारा खौ खटे पहरा नंद गाये अष्ट माल कौशक संगलाय पुनः आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरसबान औ आहे बिनोदा गाव है सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशली पट मजरी टोडी कही अलाप का मोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप का लंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गाव राव कन राग कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गाव है पांचों संग बरंगन लाव है बैरारी करनाटी तरी गवरी गाव है आसावरी ते पाछे सिंध भी अलापी श्री राग से पांचों थापी सालू सार्ग सागराय और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वै गाव है पांचों संग बरंगन लाव है सोठ गुण मलारी तुनी पुन गाव है आसा गुण गुनी

ना लाख है। प्रभु के सेवकाओ को ना पहुंचाए, प्रभु के सेव पूछते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा दस प्रगटाया। निकी कीरी में कल राख है, पसम करै लस्कर कोट लाख है, जिसका सास न काट तो आप ताकव राखत दे कर हाथ। मानस जतन करत बपात, तिसके करत बिरथे जात, मारे ना राख है अवर न कोई, सर्ब जिया का राखा सोहे का हे सोच कर है रे प्राणी, जप नानक प्राव अलख बिड़ाणी। बारंबार बार प्रभु जपिया, पी अमृत मन तंत्र हपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस केश अवर ना।

प्रभक संत दीन दयाल भक्त वत्सल सदा कृपाला नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रतपालया पुरख कारण करता भक्त जना के प्राण आधार जो जो जपैस होए पुनीत भक्त पाहि लावे मन हित हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोक पाए एक निम खर के गुण गाय अनकराज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जापती हर हर नीत भली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूर्ण गुर मंत्र साज संग प्रभ देव निवास

जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्क सो कह सह व्याप जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह कह सोत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक हरगमा पार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुपाय

ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर बिनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी।

सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का एह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन मुलीक ला लेह रत्न सुन समाप्त हो तो उदार आप त्रै लोक निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग जाकै मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाद बाजै। सुन सुने अंत करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उदरे तिनकै साथे। सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पहे सवरेन अमृत नाम साध संग लैन।